0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सैटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

अस्सलाम वालेकुम, एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से महमूद मलिक और वसीम आबिद हाजिर हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 अक्टूबर रात 9 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे की खबरें पेश खिदमत हैं। जनूब मगरबी जापान के ओकिनावा में पुलिस ने प्रीफेक्चर में तैनात एक अमरीकी मैरीन को मकामी खातून के कत्ल और डकैती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि खातून की मौत दम घुटने से हुई। मुलजिम 20 साला डेविन जैकब बालाट है, जो अमरीकी मेरीन कोर के फुतेनुमा फिजाई अड्डे पर तैनात है। इतलात के मुताबिक उसने शहर के एक होटल में हफ्ते की सुबह तकरीबन 2 बजे से 4 बजे के दरमियान नाहा की 39 साला रहायशी यागी अन्ना को कत्ल कर दिया। बालाट पर उसका पर्स और दीगर सामान चोरी करने का भी शुबा है। पुलिस का कहना है कि मकतूला की लाश के तफसीली मुआयने से मालूम हुआ है कि उसकी मौत गर्दन पर दबाव के बायस दम घुटने से हुई। सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी खातून के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुआ और बाद में खातून का सामान लेकर चला गया। फुटेज में मौजूद शख्स के बाल और टैटू मुबैना तौर पर बालाट से मिलते जुलते हैं। जापान अमेरिका स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट के तहत अमरीकी हुकाम को बुनियादी हक हासिल है कि वह सरकारी फराइज मनसूबी के दौरान अमरीकी फौजी एहलकारों के किए गए जुराइम पर दायरा इख्तियार इस्तेमाल करें। इस माहदे में यह भी कहा गया है कि ड्यूटी के औकात के अलावा किए गए जुराइम की सूरत में अगर मुश्तबा अफराद अमरीका के पास हैं तो वह उस वक्त तक अमरीकी हिरासत में रहेंगे जब तक जापानी जानिब से उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जाती। पुलिस को हफ्ते की रात देर गए ओकिनावा शहर में मस्कूरा होटल से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक तफरीही इलाके से बालाट मिला। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इस मुकदमे का अमरीकी फौजी ड्यूटी से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि वो नहीं जानता। जापान की वजीर आजम ताकाइची सानाई का कहना है कि जापानी हुकूमत ने ओकिनावा में तैनात अमरीकी मैरीन की डकैती और मकामी खातून के कत्ल के शुबे में गिरफ्तारी के बाद अमरीका से शदीद एहतजाज किया है। ताकाइची ने इतवार के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह का इंतहाई सफाकाना और घनौना वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी लिखा कि हुकूमत ने तहकीकात में मुकम्मल अमरीकी तआवुन, अमरीकी फौजी एहलकारों में नज्म जब्त को सख्त बनाने और वाकयात और सानहात के इयादे की रोकथाम के लिए मुकम्मल इकदाम का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने वादा किया कि हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश करेगी। जापान के वजीर दिफा का भी कहना है कि उनकी वजारत ने अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कोयजुमी शिंजुरो ने इतवार को कानागावा प्रीफेक्चर में सहाफियों से बात करते हुए वाकये को शर्मनाक करार देते हुए बर्मी का इजहार किया। उन्होंने बताया वजारत दिफा ने अमरीका से कहा है कि वह अपने फौजी एहलकारों की इखलाकी तरबियत पर तवज्जो दे और मुतासरा खानदान के लिए फौरी और मौजू रद्द अमल का इजहार करे।

0: बावजूद वो अपनी बेटी की आवाज तक नहीं सुन सकती। मेगुमी को शिमाली कोरिया के एजेंटों ने 49 साल कबल 15 नवंबर 1977 को बुहिरा जापान के साहिल पर वाकया नीगाता शहर में स्कूल से घर जाते हुए अगवा कर लिया था। 90 साल की उम्र में साकी हुकूमत की तरफ से तस्लीम शुदा और अब तक लापता मगवियान के जिंदा वालदेन में आखिरी शख्सियत हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस मसले से लोगों को आगाह करने के लिए जापान भर का सफर करने के बावजूद कोई मालूमात सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि पहले वो मेगुमी की सालगिरह पर केक खरीदती थी, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि अब कई सालों से उन्होंने केक खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि वो एक ही अमल को बार बार दोहराने के काबिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब भी वो इस गर्मजोशी को नहीं भूल सकती जो उन्होंने अपनी बेटी की पैदाइश के वक्त महसूस की थी।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां। जनूब मगरबी जापान के ओकिनावा में पुलिस ने प्रीफेक्चर में तैनात एक अमरीकी मेरीन को मकामी खातून के कत्ल और डकैती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि खातून की मौत दम घुटने से हुई। मुलजिम अमरीकी मेरीन कोर के फुतेनमा फजाई अड्डे पर तैनात है। जापान की वज़ीर आज़म ताकाइची सानाए का कहना है कि जापानी हुकूमत ने ओकिनावा में तैनात अमरीकी मेरीन की डकैती और मकामी खातून के कत्ल के शुबे में गिरफ्तारी के बाद अमरीका से शदीद एहतजाज किया है। वज़ीर आज़म ताकाइची ने इतवार के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह का इंतहाई सफाकाना और घनौना वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: さあ行こう。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
1: निंजा 博物館までどう行ったらいいですか?
2: अगर आप इसे याद कर लें, तो इसे इस्तेमाल करते हुए रास्ता पूछ सकते हैं.
3: निंजा 博物館के मायने है निंजा म्यूजियम. मादे यानी तक और दो इत्तरा ई देस्का का मतलब है कैसे जाएंगे. आज का नुक्ता रास्ता पूछने से मुतालिक है. اس کے لیے اپنی منزل کے مقام کے بعد حرف جار مادے لگا کر اس کے بعد دو اتارا ایرس کا لگائیں. اتارا فعل ایکو یعنی جانا کی شرط یا شکل ہے. اس جملے کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا.
2: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
4: دو اتارا ایرس کا نینجا 博物館までどう行ったらいいですか。忍者博物館までどう行ったらいいですか。
3: अब रास्ता पूछने वाला एक मकालमा सुनिए.
5: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか。101番のバスに乗ってください。
3: और अब इस मकालमे की तशरीह.
5: すみません。
2: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा.
3: ये अल्फाज किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देस्का.
2: किंकाकुजी तक कैसे जाएंगे.
3: किंकाकुजी क्योटो के एक मशहूर मंदिर का नाम है. इस मकालमे में वहां तक जाने का रास्ता पूछा जा रहा है.
5: 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई.
2: 101 नंबर की बस में सवार हूं.
3: 101 बान यानी 101 नंबर. बस का जापानी तलफ्फुज़ है और नोत्ते फेल नोरू यानी सवार होना की ते शक्ल है. नोत्ते कुदासाई के मायने हुए सवार हूं.
2: तो सामईन अब सुनिए और दोहराइए.
4: どう行ったらいいですか。金閣寺までどう行ったらいいですか。すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか。
3: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें. فرض کریں آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کا راستہ بھول گئے. آپ کسی کو نقشے میں اپنے ہوٹل کے مقام پر انگلی رکھ کر دکھاتے ہوئے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ہوٹل تک کیسے جائیں گے. اس ہوٹل کی جاپانی ہے
4: کونو ہوتل. کونو ہوتل.
3: بات کا آغاز آنو سمیما سین سے کریں.
5: آنو سمیما سین کونو ہوتل مادے دو اتتا رہی دیس کا. آنو سمیما سینこのホテルまでどう行ったらいいですか。
3: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफार्म पर जाना चाहते हैं. शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफार्म को कहते हैं
4: शिंकानसेन नो होम. शिंकानसेन नो होम.
3: तो सामीन कोशिश करें.
6: すみません。शिंकानसेन नो होम までどう行ったらいいですか。すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか。
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा.
3: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मश्क का. आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं. दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी.
2: तो सामईन सुनिए और दोहराइए.
4: मिगी
3: 左。सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु. इसे भी दोहराकर मश्क करें.
4: मस्सुगु.
3: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई. और अगर दाएं मुड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मुड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगात्ते कुदासाई.
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं. उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है.
7: माइक 似合うね。かっこいい。
8: 嬉しいな。
1: すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
2: アブミヤーカサフリヒダイアトナマ。カイトアルマイクネミエプリフェクチャルジャネケリエハイベバスイステマルキーティ。バスケゼリエサファルメクシバクラクタヘレキンヨサファルカササザリアヘトアチカマズウヘジャパンキハイベバセン。
3: ハイウェイバスの間で、कई मकबूल मकामात तक براہ راست जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए, तो सोते हुए सफर करने के बाद इस वक्त बचाया जा सकता है।
2: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
3: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फुजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गरम चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
2: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
3: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बाद सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
2: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है।